साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: Paul Shah.
1: And we got Paul Shah's threesome for you as well. What more could you possibly want?
0: Next on Sunrise. Sunrise Radio.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 or visit asianfuneralcare.com.
3: Have you spotted anything?
4: Any seagulls. Are you sure this beach is a nature reserve?
3: Well, the sign said nature this way. Hey, what's that big bird over there? Flapping its wings, unusual markings.
4: You sure that sign didn't say nature ists?

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: Taking you back to the turn of the century, sun 2000, धड़कन उदित नारायण अलका याग्निक दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे से आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे द 11th की सुबह शबनम साही के साथ गुड मॉर्निंग
1: प्यार कर लो
2: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday, 9:25 PM, only on Colors TV. The hit of the hour with Jamin Foods, delicious, convenient pot meals like upma, poha, dal bhat, sabudana khichdi, ready in a matter of minutes. Available at stores near you, Jamin, the ethnic taste of India. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर असीम अजहर एंड साबरी सिस्टर्स इट इज द टाइटल ट्रैक फ्रॉम मेरी जिंदगी है तू जहां भी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग

0: Shabnam Sahi on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So, when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's best dancer season 5. Coming soon on Sony TV.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: Are you due for a remortgage on your home or buy-to-let property? Then look no further than Cashback Remortgages. Let our experienced team get you the best available remortgage deal in the market and receive some cashback on your remortgage. Call 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Cashback Remortgages, West London-based brokers. Authorised and regulated by the FCA. T's and C's apply. Cashback bonus with no fee.

0: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
1: अरे चंचल कुमारी साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया लॉन्ग टाइम कैसी हो तुम
2: खातून कौन थी
3: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है डोमेस्टिक वायलेंस
2: तो पुलिस में जाती वन विभाग में क्या करने आई थी इस हर पति एनिमल
4: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो पति पत्नी और वो दो इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई
5: इमेजिन अ प्लेस वेयर यू कैन एस्केप फॉर अ डे गेट इमर्स्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ रूम्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपर्टीज Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
6: Shabnam Sahi on Sunrise with India's best dancer on Sony TV. Nothing beats the feeling you get when dancing. So, when you feel like dancing, dance. The stage is set. The dancers are ready. Are you? India's best dancer season 5. Coming soon on Sony TV.
7: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on hand-picked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
8: 10:50 on Sunrise with me, Shabnam Sahi. Sunidhi Chauhan, Jubilee.

0: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208-574-8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
1: जिंदगी की स्पीड और गर्मा गर्म चाय की नीड हमेशा रहती है, सो कीप द मोमेंटम गोइंग बिकॉज वीव गॉट यू कवर्ड। रॉयल चाय प्रीमियम इंस्टेंट टी, बस सैशे खोलो, गर्म पानी घोलो और एक लंबी चुस्की लेकर बोलो वाह। कड़क मसाला, इलायची और कश्मीरी, चूज योर चाय एंड हैव इट रेडी इन अ मोमेंट। रॉयल चाय, कहीं भी कभी भी।
2: स्मार्ट मनी अब प्रेशियस मेटल्स की तरफ बढ़ रहा है। 2025 में चांदी की कीमत 142% बढ़ी और सोने की 62%। डिमांड स्ट्रॉन्ग है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड। इससे फायदा उठाने का वक्त अब है। ब्रिटानिया कॉइन्स एंड बार्स का इमीडिएट स्टॉक हाजिर है। कॉन्टैक्ट करें मीना ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड, लंदन, SW17 70G। कॉल 0208-767-7547। Samina, have you noticed? Asian spices and groceries have become so expensive.
3: You haven't been buying Lioncroft branded range, have you? Their prices are substantially lower than others on spices, canned foods, dals, beans, vegetable oils, including premium range of dry fruits and nuts.
2: That's amazing. Time to stock up and save.
3: Exactly. I'm saving a bundle and still getting top quality. Lioncroft Foods. Quality you trust. Prices you love. Find us in stores today. Small price, big flavour.
0: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777.
4: Part two is on its way after this one from Jasmine Sandlis and Satinder Sartaj from Durandar 2.

क्लास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208 574 8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड़ा सोना,
2: वसीम ज्वेलर्स।
4: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
5: May को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका। कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th May से सिनेमाज में।
6: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise. Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.